एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यूरो।

0: श्रृंखला नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम भजन श्रृंखलामा म प्रस्तोता युवेन्द्र। अबको यो प्रस्तुतिमा म यहाँसँग केही लोकप्रिय भजनका साथमा रहनेछु।
1: कि भगवान, हमारे मन में एक शंका है और वो ये है कि भव सागर से कैसे पार हुआ जाए, उसका कोई उपाय, कोई युक्ति आप बताएं। तो वो कहते हैं कि तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। और उससे पहले वो कह रहे हैं

कि कवि लोग किस प्रकार से कविता की रचना करते हैं। एक कवि ने कहा, आप ध्यान देना शब्दों पर और फिर देखना उसका अर्थ क्या है।

ऐसी कैसी कविता कि पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे बिन चैन, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रहे। फिर से सुनिए।

लेकिन नहीं, बड़ी गहरी बात उन्होंने कही है, सुनने में कुछ अनर्थ लग रहा है। कहा क्या है? पाप करे बिन गति नहीं, पा

सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसी खुली जैसी सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली, सदियों सदियों से बंद थी वो आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था, उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी ना था, भीतर कोई भी ना बचा, सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था। कहते हैं बुद्ध 7 दिन वैसे ही बैठे रहे, मूर्तिवत, हिले नहीं, डुले नहीं। कहते हैं देवता घबरा गए, आकाश से देवता उतरे, ब्रह्मा उतरे, चरणों में पड़े और कहा आप कुछ बोले। ऐसी घटना सदियों में घटती, बड़ी मुश्किल से घटती, आप कुछ कहें। हम आतुर हैं सुनने को कि क्या हुआ है। हिंदू बहुत नाराज है इस बात से कि बौद्ध कथाओं में ब्रह्मा को उतार के और बुद्ध के चरणों में गिरा दिया, लेकिन कथा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देवता भला स्वर्ग में हो आकांक्षा के बाहर थोड़ी। आज एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति आकांक्षा के बाहर चला गया, तो बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं, बुद्धत्व आखिरी बात है, देवता भी नीचे हैं, अभी उनकी भी स्वर्ग की भोग की आकांक्षा है। इसलिए तो कथाएं हैं कि इंद्र का आसन डोलने लगता, जब भी लगता है कोई प्रतियोगी आ रहा, कोई ऋषि मुनि तपस्या में गहरा उतर रहा, इंद्र घबरा था, आसन कपने लगता। ये तो आसन इंद्र का क्या हुआ, दिल्ली का हुआ। इंद्र का कहो कि इंदिरा का कहो, एक ही बात, इसमें कुछ बहुत फर्क ना हुआ। ये तो कोई आने लगा,

मिलता है, खोज चुके खूब, अब खोज छोड़ो, खोज के नहीं मिलता सत्य, क्योंकि सत्य खोजी में छिपा है, खोजने वाले में छिपा है। कहां भागते फिरते हो? कस्तूरी कुंडल बसे, लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है, कस्तूरी मृग पागल हो जाता, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहां से आती ये गंध, कौन खींचे ले आता है सुवास को, कहां से आती, क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी, कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही तब भी वो सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है, और कस्तूरी उसकी ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है, तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग में व्यर्थ। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं, योगातीत भोगातीत। इसलिए तुम पाओगे सांसारिक का अहंकार होता है, तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध होता है, तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ के चलता है, पताकाएं लेके चलता है, तुमने योगियों की पताकाएं हाथी घोड़े देखे या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास, तुमने योगियों को देखा घोषणा करते कि नहीं कि इतनी सिद्धि है इतनी रिद्धि है? लेकिन ये सारी बातें वही की वही है, कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक योग योगातीत ना हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूं इस भाव से समग्रता या मुक्त ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, तब तक तुम गिरगिट हो, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदला। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्म उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना है। ये बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़ के आना चाहते तो कोई क्या करे, अगर तुम अपने कान को उल्टे तरफ से पकड़ना चाहते हो, मजे से पकड़ो, निश्चित तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुसाध्य घटना है। ये तुम्हारे कारण, ये कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुसाध्य घटना है, तो तुम गलत भी नहीं कह रहे, तुम ठीक ही कह रहे, लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो, जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुसाध्य घटना नहीं। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ, धूनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो, और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी दुसाध्य घटना है, तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुसाध्य मालूम होता है, तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही। लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है ये भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है जबकि तुम्हारे पास पैर? सिर के बल चलने का एक मजा है, और वो मजा ये है, मजा है अहंकार का मजा। मुल्ला नसुद्दीन एक झील में मछलियां मार रहा था, घड़ी दो घड़ी में देखता रहा देखता रहा, उसकी मछलियां पकड़ने कुछ आती नहीं, झील में मछलियां हैं भी नहीं ऐसा मालूम होता। मैंने उससे पूछा, नसरुद्दीन इस झील में मछलियां मालूम नहीं होती, तुम कब तक बैठे रहोगे? वो पास की दूसरी झील है, वहां क्यों नहीं मछलियां मारते? यहां कोई दूसरा मछुआ दिखाई भी नहीं पड़ता, वहीं सब मछुए। नसरुद्दीन ने कहा, वहां मारने से सारी क्या, अरे वहां इतनी मछलियां कि मछलियों को तैरने के लिए जगह भी नहीं, वहां मारी तो क्या मारी, यहां मछली मारो तो कोई बात। असाध्य में भी आकर्षण है, जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है,
यहां मछली मारो,

0: तो कुछ है। जो सभी कर रहे हैं वही तुमने किया तो क्या सार है। सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा। सिर के बल चलो। मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है कठिनाइयों का। कठिनाइयों का संबंध अहंकार से। अहंकार कठिन को करने में मजा लेता क्योंकि सरल तो सभी करते हैं, उसमें क्या सार है। अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सभी चलते। लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई कि तुम सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो। जैसे हिलरी चढ़ गया एवरेस्ट पर तो सारी दुनिया में खबर हुई। अब तुम जाओ और पूना की छोटी मोटी पहाड़ी पे चढ़ के खड़े हो जाओ और झंडा लगाने लगो और तुम कहो कोई अखबार वाला भी नहीं आ रहा, कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा, मामला क्या है। आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है। हिलरी के साथ इतना शोरगुल मचाया, इतिहास में नाम अमर रहेगा सदा के लिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी वही कर रहे हैं, उसने भी झंडे गाड़ा हुआ, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है। 50-60 साल से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब एक आदमी चढ़ पाए। इसलिए धीरे धीरे वहां रास्ता बन जाएगा, बस जाने लगेगी, कभी ना कभी जाएगी कोई। सदा इतनी देर तक एवरेस्ट अपने को बचा नहीं सकता आदमी से। जब एक आदमी पहुंच गया तो सिलसिला शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले औरतें भी पहुंच गई, जब औरतें भी पहुंच गई तब और पहुंचने को क्या बाकी रहा। अब सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, थोड़े दिन में वहां होटलें और बसें और सब पहुंच जाएंगी। फिर जाकर तुम झंडा गाड़ना जब बस वगैरह सब चलने लगे। वहां तुम कहोगे ये वही जगह है जहां हिलरी ने झंडा गाड़ा। बड़ा भेदभाव हो रहा है, बड़ा पक्षपात हो रहा है। कठिन में अहंकार को मजा है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता ताकि अहंकार को भरने में रस आ सके। हम बहुत सी चीजों को कठिन कर लेते हैं, जितनी कठिन कर लेते उतना ही रस आने लगता है। कठिनाई परमात्मा को पाने में नहीं है, कठिनाई अहंकार का रस है। तो तुम जो कहते हो सदा से खोजियों का ये अवलोकन रहा है कि परमात्म उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना है, ये ठीक है। वो जो खोजी है अहंकारी है। और परमात्मा को खोजियों ने तब पाया जब खोज छूट गई, तब पाया। खोज छूटने पर ही मिलता है परमात्मा। जब तुम कहीं भी नहीं जा रहे, सिर्फ बैठे हो विश्राम में, परम विराम में, यात्रा शून्य जहां हो जाती। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पालेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी। यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे। हालत उल्टी है, तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल जाए। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है, श्रम अहंकार का सूत्र है। इसलिए तुम पाओगे कि जितना जिस धर्म के भीतर श्रम की व्यवस्था है साधु के लिए, उतना ही अहंकारी साधु होगा। जैनियों का साधु जितना अहंकारी, उतना हिंदुओं का नहीं। क्योंकि जैन साधु कहेगा हिंदू साधु, इसमें रखे क्या, कोई भी हो जाए। जैन साधु कठिन मामला है। एक बार भोजन, अनेक अनेक उपवास, सब तरह की कठिनाइयां। फिर जैनों में भी दिगंबर और स्वतांबरों के साधु हैं। दिगंबर साधु कहते हैं स्वतांबरों में क्या रखा, कपड़े पहने बैठे। साधु तो दिगंबर का है, इसलिए दिगंबर साधु में तुम जैसे अहंकार को चमकता हुआ पाओगे कहीं भी ना पाओगे। देह तो सूखी होगी, हड्डी हड्डी होगी, क्योंकि बहुत उपवास, नग्न रहना, धूप ताप सहना, लेकिन अहंकार बड़ा प्रज्वलित होगा। अकड़ उसकी वैसी जैसी हिलेरी की। हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 दिगंबर मुनि है, स्वतंबर मुनि तो 5-7 हजार है, हिंदुओं के तो सन्यासी 50 लाख है। और अगर मेरी चले तो सारी दुनिया को सन्यासी कर दो, इसलिए मेरे सन्यासी होने में तो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मैं कह ही नहीं रहा हूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। एक बहुत ही सरल मामला है, तुम गेरुए कपड़े पहन लो, सन्यासी हो गए। सन्यास सरल हो तो अहंकार को मजा कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास आप देते हैं तो इसके लिए कोई विशेष आयोजन करना चाहिए। विशेष आयोजन सन्यास के लिए, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, अगर जैन दीक्षा होती तो देखा कैसा बैंड बाजे घोड़ा इत्यादि बजता है और सब मजा आता है और लगता है कोई बड़ी घटना घट रही, कोई सिंहासन पर चढ़ाया जा रहा। सन्यास भी सिंहासन जैसा हो गया और लोग जय जयकार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घट रही, और मैं सन्यास ऐसा चुपचाप दे देता हूं, किसी को पता नहीं चलता, पोस्ट से भी दे देता हूं, मुझे भी पता नहीं चलता कौन सज्जन है, उनको भी पता नहीं चलता। मेरे देखे सन्यास सरल होना चाहिए, मेरे देखे परमात्मा विश्राम में मिलता है, अहंकार में नहीं। कृत्य नहीं है, खोज नहीं है, परमात्मा मिला ही हुआ है। तुम जरा हल्के हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा रुको, अचानक तुम पाओगे वो सदा से था। आखिरी प्रश्न, हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? ये कौन है जो कह रहा है कि शरीर में 20 अरब कोशिकाएं? निश्चित ही कोशिकाएं नहीं कह रहे, एक कोशिका बाकी कोशिकाओं का हिसाब भी नहीं लगा सकती। ये 20 अरब कोशिकाएं हैं शरीर में, अरबों खरबों सेल हैं शरीर में, ये कौन कह रहा है? ये किसने पूछा? ये किसको पता चला? जरूर तुम्हारे भीतर कोशिकाओं से भिन्न कोई है जो गिनती कर लेता कि 20 करोड़ कोशिकाएं। हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? उसी से जो कह रहा है कि 20 अरब कोशिकाएं। यदि मस्तिष्क की कोशिकाओं से कहते हैं तो बात व्यर्थ है, क्योंकि बुद्धि नश्वर है। नहीं, हम कह भी नहीं रहे मस्तिष्क की कोशिकाओं से, हम तुमसे कह रहे हैं। अष्टावक्र भी तुमसे बोल रहे हैं, अष्टावक्र इतने बुद्धू नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं। तुम्हारा होना तुम्हारी कोशिकाओं के पार है, तुम कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हो, सच। जैसे एक कार में बैठा हुआ ड्राइवर कार चला रहा है, दौड़ा जा रहा है, कार की गति से दौड़ा जा रहा है, 100 मील प्रति घंटे चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर भीतर है वो कार नहीं है। और अगर एक सिपाही सीटी बजाए कि रुको, और वो पूछे कि किससे कह रहे हैं? कार के इंजन से, क्योंकि चल तो इंजन रहा है। किससे कह रहे हैं? पेट्रोल से, क्योंकि चला तो पेट्रोल रहा है। किससे कह रहे हैं? पहियों से, क्योंकि दौड़ तो पहिए रहे। तो क्या कहेगा पुलिस का सिपाही? वही मैं तुमसे कहता हूं कि सीटी तुम्हारे लिए बजा रहे। यदि आप आत्मा को जगा रहे हैं तो भी बात व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो जागी ही हुई है, उसको जगाना और पहचानो कहना तो बेवकूफी। बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा तो जागी हुई रही, उसको जगाने का कोई उपाय नहीं, और हम उसको जगा भी नहीं रहे। मामला कुछ ऐसा है कि तुम बने हुए पड़े हो, जागे हुए पड़े और आंखें बंद किए। सोए को जगाना तो बहुत आसान है, हिलाओ डुलाओ, पानी छिड़को, जागेगा। जागा हुआ अगर कोई आदमी पड़ा हो आंखें बंद करके ढोंग करता हो सोने का, इसको कैसे जगाओ? छिड़को पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिलाओ डुलाओ, वो हिलडुल के फिर करवट लेके सो जाता है। पुकारो नाम, सुन लेता है, बोलता नहीं। ऐसी तुम्हारी हालत है। जागे हुए को जगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जागा हुआ सोने का बहाना कर रहा है, इसलिए जगाने की जरूरत है। सोए हुए को जगा नहीं रहे क्योंकि आत्मा सो नहीं सकती। जो सोया है वो शरीर है, जो शरीर है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा जागी हुई है उसे जगाने का कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो, बड़े ज्ञान की बात कह रहे हो, मगर उधार होगी, क्योंकि खुद की समस्या आई होती तो पूछते ही नहीं। अस्तवक्र या मैं उसको जगा रहे हैं जो जागा हुआ है और भूल गया कि हम जागे हुए। जो जागा हुआ है और सोने के बहाने में पड़ गया है, सोने का खेल खेल रहा है, इसलिए तो कठिनाई है जगाने में, बड़ी कठिनाई है। आप लोगों को भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। तुम सोचते हो लोग भ्रम में है नहीं। अगर लोग भ्रम में नहीं है तो निश्चित ही मैं भ्रम में डाल रहा हूं, मगर अगर लोग भ्रम में नहीं है तो भ्रम में डाले कैसे जा सकेंगे? इतने बुद्ध पुरुष भ्रम में डाले जा सकते हैं। और अगर लोग भ्रम में, तो जो मैं कर रहा हूं वो भ्रम के बाहर लाने की चेष्टा है। जो भी तुम हो उससे उल्टा मैं कर रहा हूं। अगर तुम सोचते हो तुम भ्रम में हो तो ये चेष्टा जगाने की, अगर तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो तो ये चेष्टा तुम्हें भ्रम में डालने की। लेकिन अगर तुम जागे हुए तो कौन तुम्हें भ्रम में डाल देगा? ख्याल रखना, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें भ्रम में कोई भी नहीं डाल सकता। और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा भी नहीं सकता। जगाने की चेष्टा कोई कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सहयोग ना करोगे तुम जागोगे नहीं, क्योंकि नींद थोड़ी है कि कोई तोड़ दे। तुम बने हुए पड़े हो, तुम्हारा सहयोग जरूरी है। सहयोग का अर्थ ही शिष्यत्व है। सहयोग का अर्थ ही है कि कोई जगाने वाले के पास तुम जाते हो, तुम कहते हो मेरी पुरानी आदत हो गई अपने को धोखा देने की, जरा मुझे साथ दे, जरा मुझे सहारा दे कि इस आदत के बाहर निकाल ले। एक युवती मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे कुछ मादक द्रव्य लेने की आदत हो गई, बाहर आना चाहती, बड़ी आकांक्षा है बाहर निकल आने की, बड़ी आतुर है कि किस तरह बाहर निकल आए। लेकिन वो जो आदत पड़ गई मादक द्रव्यों की, वो इतनी गहरी हो गई है, वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंच गई। अगर न ले मादक द्रव्य तो ऐसी पीड़ा और बेचैनी सारे शरीर में होती कि न तो सो सकती, न उठ सकती, न बैठ सकती, तो लेना ही पड़ता है। और लेती है तो पीड़ा होती मन को कि ये क्या जाल हो गया। अब वो मेरे पास आई कि मुझे बाहर निकालने आपके हाथ का सहारा चाहिए। बस ऐसी ही अवस्था है। जन्मों जन्मों तक सोने के अभ्यास को तुमने बहुत गहरा कर लिया है, जागे हुए को सोने के भ्रम में डाल दिया है, सम्राट को भिखारी मान लिया, लेकिन इतने जन्मों तक माना है कि आज अपने ही अभ्यास के कारण सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बात सुन ले सकते हो, उससे कुछ भी ना होगा, जब तक कि तुम उसे गुनो ना, जब तक कि तुम राजी ना हो जाओ। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा ना सकेगा। नहीं तो एक बुद्ध पुरुष काफी था, शोरगुल मचा के सबको जगा देता, ढोल ढमास पीट देता और सबको जगा देता। इधर 100 आदमी सो रहे हो तो एक आदमी जगाने के लिए काफी, वस्तु तो आदमी की भी जरूरत नहीं, अलार्म घड़ी भी जगा देती। एक आदमी आ जाए और ढोल पीट दे सब उठ जाएंगे, घंटा बजा दे सब उठ जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका कि बुद्ध पुरुष हुए, महावीर हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, जरथुस्र, लाओसु, इन लोगों ने ऐसा क्यों ना किया कि जोर से घंटा बजा देते सारी पृथ्वी जाग जाती। घंटा खूब बजाया मगर कोई सो रहा हो तो जागे, यहां बने हुए लोग पड़े, वो आंखें बंद किए पड़े, वो सुन लेते हैं घंटे को, वो कहते हैं बजाते रहो देखें कौन हमको जगाता है। जब तुम जागना चाहोगे तो जागोगे। भ्रम में मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, भ्रम में तो तुम हो, अब और भ्रम में तुम्हें क्या डाला जा सकता है। तुम्हें और भी भटकाया जा सकता है, तुम सोचते हो और कुछ भटकने को बचा है, इससे नीचे तुम और गिर सकते हो, गिरने की कोई और जगह है। लोभ जितना तुम्हारे भीतर है इससे थोड़ा इंच भर और ज्यादा हो सकता है, क्रोध तुम्हारे भीतर है इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, एक रत्ती मासा। वासना ने जैसा तुम्हें घेरा है और वासना बढ़ सकती, तुम आखिरी जगह खड़े हो, जो प्रथम होना चाहिए वो आखिर खड़ा है, जो सम्राट होना चाहिए वो भिकमंगा होकर खड़ा है। इससे पीछे तुम अब जा भी नहीं सकते, इसके पार गिरने का उपाय भी नहीं है, तुम्हें ब्रह्म में डालने की कोई सुविधा नहीं है, कोई डालना भी चाहे तो डाल नहीं सकता। हाँ कोई इतने कर सकता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ब्रह्म बदल दे, एक ब्रह्म से तुम उब जाओ तो दूसरा ब्रह्म दे दे, यही साधु संन्यासी करते रहते। संसार का भ्रम उखड़ने लगा, ऊब पैदा होने लगी, खूब जी ली अब कुछ सार नहीं, देख लिया तो अध्यात्म का भ्रम पैदा करते, कहे कि चलो अब स्वर्ग का मजा लो, अब थोड़ा पुण्य करो, त्याग तपस्या करो, स्वर्ग में आप सराएं भोगो, यहां बहुत भोग ली कुछ पाया नहीं, यहां चुल्लू चुल्लू शराब पीते रहे, वहां बहिष्ट में फिरदौस में झरने बह रहे शराब के, डुबकियां लगाना, यहां क्या रखा है, स्वर्ग में स्वर्ण के महल है, हीरे जवाहरातों के वृक्ष, वहां मजा लो, कल्प वृक्ष उनके नीचे बैठो, यहां तो रोना पीना रोना धोना खुद कर लिया, लेकिन ये नया भ्रम, मैं तुम्हें कोई नया भ्रम नहीं दे रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं काफी भ्रम देख लिए, अब थोड़ा जागो। साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है, थोड़ा सोचो, सिर्फ साक्षी होने को कह रहा हूं, जो भी है उसे देखने को कह रहा हूं, कुछ करने को कहता तो भ्रम पैदा होता, तुमसे कहता कि ये छोड़ के ये करो तो भ्रम पैदा होता, तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो भी कर रहे हो जहां भी हो, भोगी हो, योगी हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मस्जिद में, मंदिर में हो, जहां भी हो, जागो, जाग के देखो, जागने में कैसे भ्रम हो सकता है।
1: हवस् त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै, यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: the end of Classic Radio Show.
1: आप सुन रहे हैं वीकेंड क्लासिक्स और मैं हूं करण सिंह, और इस हफ्ते मैं लाया हूं आप सभी के लिए पोइट्री का सबसे खूबसूरत रूप गजलें, मोहब्बत का सबसे शीरी अंदाज यानी मीठा अंदाज। तो चलिए पहले समा बनाए कुछ गजलों के साथ।
2: तुम

वैसे गजलों की जो परिभाषा है वो बड़ी सरल है, दो प्रेमियों की बातचीत। बस फर्क इतना है कि उस बातचीत को सिंपल शब्दों के बजाय थोड़े अच्छे अच्छे दिलकश लफ्जों के साथ खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है, राइमिंग करके, वरना बातचीत में गहराई कैसे आएगी, खूबसूरती कैसे आएगी, दिलकशी कैसे आएगी। हाँ, एक बात और, गजलें जो होती हैं वो अशआर से बनती हैं। अशआर यानी कई सारे शेर। शेर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वही दो लाइनों वाले जिन्हें आपने भी कई बार पढ़ा होगा, फिर किसी लड़की को या लड़के को फॉरवर्ड भी किया।

शायद ये भी कहा होगा कि मैंने लिखे हैं तुमको सोचकर। तो जो गजलें होती हैं वो कम से कम पांच शेर को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि ये वाली फ्रॉम द फिल्म निकाह।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: हाम्रो एजीएम को लागि शेयर होल्डर्सलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने
2: नेपाल टेलिकमको ग्रुप एसएमएस गर्ने नि।
1: ग्रुप एसएमएस गर्न टाइम र पैसा धेरै लाग्ला नि?
2: लाग्दैन सर, नेपाल टेलिकमको ग्रुप एसएमएस सब्स्क्राइब गरेपछि कम पैसामा अफिसबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। ग्रुप एसएमएस .ntc.net.np मा गएर लगइन गर्ने, ओटिपी भेरिफिकेसन गरेर आफूलाई आवश्यक ग्रुप एसएमएस पर्चेस गर्ने अनि एक्सेल फाइल अपलोड गरेर आफ्नो एसएमएस टाइप गरी सेन्ड गर्ने।
1: नेपाल टेलिकमका विभिन्न आकर्षक ग्रुप एसएमएस का प्याकेजहरू। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: NVL Auto Loan.
4: अब नया गाड़ी खरीद करना अझ सहज र सरल।
3: मात्र 5.89% ब्याज दरबाटै प्रारम्भ।
4: विशेषताहरू:
3: NVL Auto Loan तथा विद्युतीय सवारीमा 60% सम्मको फाइनेन्स सुविधा।
4: कर्जा अवधि 5 वा 7 वर्ष सम्म।
3: सम्पूर्ण शाखाबाट कर्जा प्रवाह हुने।
4: सरल प्रक्रिया, सुलभ ब्याज दर।
3: शर्तहरू लागू हुनेछ।
4: कल सेन्टर 01-597-1222।
5: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
6: You are listening to Weekend Classic Radio Show.
7: वैसे जब गजलें इजाद की गई थीं, इन्वेंट की गई थीं, तब वो सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करती थीं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे सरका, गजलों ने भी अपनी मियाद यानी अपनी सीमा बढ़ा दी। आखिर बाकी चीज़ों को वो भी कब तक नज़रअंदाज करती। तो गज़लों ने फ़लसफ़े को यानि फ़िलासफ़ी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर उसने समाज को लेकर, उसकी कड़वी हकीकतों को लेकर भी मुँह फट होना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो एक सिंगल गज़ल में शायर हर शेर के ज़रिए मुख्तलिफ ख़याल यानि अलग अलग थॉट्स भी बयां कर देता है। तो आइए आपको भी ऐसी कुछ गज़लें सुनाते हैं जिनमें कहीं पर इश्क है तो कहीं पर फ़िलासफ़ी।

0: सारा दिन खुशी र शान्तिपूर्ण एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल एसआर लैक्स नजिक
1: ये तो आपको बता दिया शेर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। इनफैक्ट जो पहला शेर होता है कि गजल का उसे कहते हैं मतला और हर शेर में चूंकि दो लाइन होती हैं तो पहली वाली को कहते हैं मिसराए उला और दूसरी वाली को कहते हैं मिसराए सानी। अब आपने कई बार एक शेर में किसी शायर का नाम भी सुना होगा तो उसे हम अंग्रेजी में पेन नेम बोलते हैं जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। इनफैक्ट मिर्जा गालिब साहब को हम गालिब नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब है वरना उनका असल नाम तो असदुल्ला खान साहब था। अब जैसे कि उनका एक शेर आपको सुनाता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात यह कि जिस शेर में एक शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मख्ता MAKTA नहीं MAQTA फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। और दूसरी चीज ये कि जो शेर एक गजल का सार कहता है या उसका कंक्लूडिंग शेर होता है उसे कहते हैं हासिले शेर। कई गजलों में आपने एक सिंगर को ये कहते हुए सुना होगा कि और अब सामीन मैं इस गजल का हासिले शेर अर्ज करना चाहूंगा और कई बार आपने उस शेर के बाद लोगों को मुकर्रर मुकर्रर कहते हुए भी सुना होगा। तो मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर वंस मोर। तो चलिए अब हम भी यहां कुछ बढ़िया गजलें सुनते हैं वंस मोर।

यूं तो हिंदी फिल्म म्यूजिक में गजलों का आना जाना काफी वक्त तक लगा रहा। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए, जैसे तलत महमूद हैं, सुरैया हैं, केएल सहगल साहब हैं, इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गजलों को कंपोज किया। लेकिन गजलों को असली मकबूलियत देने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें अव्वल तो हैं मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब भी आए, फिर जगजीत सिंह जी आए, जिन्होंने गजलों में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए और उस वजह से गजलों की रीच काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गजलों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज़ थे उनको सिंपल हिंदी शब्दों के साथ रिप्लेस करके गाया, जिससे गजलें आवाम तक पहुंच पाईं। फिर पंकज उधास साहब भी आ गए, उसके बाद और भी कई सिंगर्स आए, जैसे तलत अजीज़ हैं, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, और तब से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। वैसे अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसका जो मुखड़ा है वो दरअसल मिर्ज़ा गालिब साहब की एक गज़ल से लिया गया है, जो कुछ यूं थी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो गुलजार साहब ने इस मुखड़े को लिया और इसके आगे अपनी पंक्तियां जोड़कर इसे एक मुकम्मल गीत की शक्ल दी। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को भूपेंद्र जी की आवाज में, और उसके बाद कुछ और गजलें यहीं ऑन वीकेंड क्लासिक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स।

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।
1: आइए आइए बहनों और भाइयों, आइए आइए भाई। आज मैं बड़े रिलैक्स मूड में हूँ, कोई टेंशन नहीं है। उन कई छोटे बड़े हमलों का जिक्र था जो आपकी प्यारी गीतमाला पर हुए। कई तब्दीलियां भी आईं गीतमाला के गीतों के चुनाव के तरीकों में। बीच में मुझे रेडियो सिलोन कोलंबो जाना पड़ा और वहां भी कई हंगामे हुए। मगर जब 1966 का पहला हिस्सा भी बिना किसी खास उलझन के गुजरा तो मैंने सोचा कि आज गीतमाला की छाव में मैं आराम से लाजवाब गीतों में डूब कर पेश करूंगा। कभी सालाना संगीत सीढ़ियों पर डोल कर तो कभी 1966 की छाओं की यादों में झूम कर।

0: बचपन का।
1: और बचपन और जवानी की उन मधुर फिजाओं में अब गीतमाला की वार्षिक संगीत छिड़ी की हिट पायदाने भी तो सजी हुई हैं। उस साल के गीत नंबर 17 में प्यार की करवट बदल कर क्या झूमी थी वहीदा रहमान। मगर उस गीत की झलक सुनाने से पहले बहनों और भाइयों, वहीदा जी की प्यारी आवाज में सुनिए SD बर्मन के संगीत के रचने के स्टाइल की एक बात।
2: फिल्म गाइड में एक सीन के लिए डांस का म्यूजिक तैयार करना था। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत से वो म्यूजिक तैयार किया और मुझसे कहने लगे, कैसा लगा तुम्हें और इस पर कैसे डांस करोगी? देखो ये जो धक धक धना धन का टुकड़ा है ना, इस पर कुछ इस तरह डांस करना। ये कहकर खुद डांस करने लगे।
3: अरे वाह।
2: अच्छा अमीन साहब, पहाड़ी और फोक म्यूजिक बर्मन दादा इस खूबी से मिक्स करते हैं कि सिर्फ सुनते वक्त ही नहीं, उस पर डांस करते वक्त भी बड़ा मजा आता है।

बहनों और भाइयों, गाइड भी संगीत के लिहाज से मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्मों में यानी म्यूजिकल फिल्मों में शामिल है और इस फिल्म के सभी सितारों, टेक्नीशियंस और संगीत सितारों से मेरा बिल्कुल भाई जैसा

अच्छा बहनों और भाइयों, आपको याद है ना कि रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के फिल्म प्रोड्यूसर जजों की राय से हमने सरताज गीत का सिलसिला शुरू किया था, जिसके मुताबिक जो गीत 18 बार हफ्तावार गीतमाला में बज जाता तो उसे सरताज गीत का टाइटल देकर रिटायर कर दिया जाता। तो 1966 की गीतमाला एन्यूअल हिट परेड में जो जो गीत नंबर 22 से लेकर नंबर 1 यानी छोटी के पायदान पर बजे, वो सारे के सारे सरताज बने हुए गीत थे। और साहब क्या गीत थे वो, नंबर

0: मेरा साया।
1: दोस्तों, मेरा साया के हीरो हीरोइन तो आपके नैनों में बसे ही हुए हैं। आज मैं आपको उस फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला के बारे में ये बता दूं कि देखने में तो वो बड़े खामोश तबीयत के दुबले पतले शर्मीले से इंसान लगते थे, मगर उनका दिल, उनका हौसला किसी भी शानदार सितारे से कम नहीं था। गजब के घोड़सवार थे वो और स्पोर्ट्समैन थे, इसलिए एक्शन के सीन में भी खूब रंग जमाते थे। वो गदा भी बहुत ही सुरीला था उनका। रेडियो सिलोन के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में वो हर हफ्ते एज अ सिंगिंग स्टार आया करते थे, मैंने आपको बताया भी था एक बार। और कशिश उनमें इतनी थी कि एक बार अगर उन्होंने किसी लड़की से मीठी मीठी बातें कर ली तो बस वो उनको दिल दे बैठती थी। तभी तो उनकी डायरेक्शन का हर पहलू इतना खूबसूरत हुआ करता था।

अच्छा बहनों भाइयों देखिए, मेरा काम तो गीत माला की छाओ में है, बस थोड़ी सी गपशप करना, छाओ के गीत और हिट गीतों की झलकें पेश करना, और अगर मेरी इंटरव्यूज की लाइब्रेरी में कोई अच्छा सा टुकड़ा मिल जाए मुझे तो उसे भी जड़ देना है। मैं कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। हाँ, अगर आपको फिल्म संगीत की डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए तो मानिक प्रेमचंद की किताबें पढ़िए, खासतौर पर यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज। और अब तो भाई तीन और बड़ी जोरदार किताबें भी आ गई हैं हिंदी में, हमारे परम गीतमाला प्रेमी प्रोफेसर अनिल भार्गव की नई किताब स्वरों की यात्रा, और दो किताबें इंग्लिश में मशहूर जर्नलिस्ट राजू भारतन की लिखी हुई अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन, और टीवी प्रोग्रामों और कंस्ट्रक्शन की दुनिया की इंटरनेशनल हस्ती त्रिनेत्र बाजपाई और उनकी बेटी अंशुला की किताब दोज मैग्निफिसेंट म्यूजिक मेकर्स। हाँ तो भाई, इन सब के मुकाबले में आपका दोस्त अमीन सायानी जो भी कहता है ना, वो तो सिर्फ कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तर्ज अदा है। लेकिन शुक्र है मेरा ये स्टाइल गीतमाला में भी और गीतमाला की छाओ में भी संगीत प्रेमियों को पसंद आता रहा है, वरना तो वो कभी के मुझे रिजेक्ट कर चुके होते ये कह

दोस्तों मेरा ख्याल है फिल्म दिल्लगी का ये वार्षिक पायदान नंबर 14 का हिट गीत चुलबुली अच्छी प्यारी उषा मंगेशकर को गाते हुए सुन लिया होगा उनके आसपास के सभी कुंवारे उम्मीदवार लड़कों ने, और सब नाराज होकर भाग गए होंगे, वरना तो कई नौजवान तैयार हो जाते उनसे वही कहने के लिए जो राजकुमार ने कहा था मीना कुमारी से फिल्म काजल में, सालाना पायदान नंबर

0: मगर अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस मोड़ पर मीना कुमारी की मधुर आवाज कुछ कहने वाली है आपसे राजकुमार के बारे में।
1: इतनी सारी फिल्मों में मेरे साथ काम करने के बावजूद वो आज भी मेरे लिए अजनबी हैं। मेरे ख्याल में शायद बहुत कम लोग होंगे जो राज साहब को सही मानों में जान सके होंगे। राज साहब न सिर्फ बहुत अच्छे अदाकार हैं बल्कि बड़े अच्छे शायर भी हैं। मैंने कई बार उन्हें सुना है, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा असर है उनकी आवाज़ में।
0: अच्छा साहब, उस साल नंबर 12 पर वो गीत था जिसने एक तरह से फिल्मी दुनिया के एक बड़े ही शानदार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर गुरुदत्त के चले जाने के गम के जख्मों पर मरहम का काम किया था।

फिल्म बहारें फिर भी आएंगी गुरुदत्त की आखिरी प्रोडक्शन थी, जिसे गुरुदत्त के चले जाने के बाद उनके भाई आत्मा राम ने मुकम्मल करवाई मशहूर डायरेक्टर शाहिद लतीफ की मदद से। आत्मा राम साहब ने मुझे भी बुलाया था फिल्म का प्रीव्यू गुरुदत्त स्टूडियोज में देखने के लिए, और बहनों और भाइयों आज तक उस प्रीव्यू का असर तारी है मेरे दिल पर, खासकर उस फिल्म के गीतों का।

0: और भाइयों शांति आराधना बार गीत वाला की छाव में
1: कंचनजंगा अगरबत्ती नेपाल को पहलो आईएसओ सर्टिफाइड अगरबत्ती कंपनी
2: कंचनजंगा अगरबत्ती पवित्र सुवास

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: हाम्रो एजीएम को लागि शेयर होल्डर्स लाई इन्फर्म गर्नु पर्ने,
2: नेपाल टेलिकम को ग्रुप एसएमएस गर्ने नि।
1: ग्रुप एसएमएस गर्न टाइम र पैसा धेरै लाग्ला नि?
2: लाग्दैन सर, नेपाल टेलिकम को ग्रुप एसएमएस सब्स्क्राइब गरेपछि कम पैसामा अफिसबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। ग्रुप एसएमएस .ntc.net.np मा गएर लगइन गर्ने, ओटिपी भेरिफिकेसन गरेर आफूलाई आवश्यक ग्रुप एसएमएस पर्चेस गर्ने अनि एक्सेल फाइल अपलोड गरेर आफ्नो एसएमएस टाइप गरी सेन्ड गर्ने।
1: नेपाल टेलिकम का विभिन्न आकर्षक ग्रुप एसएमएस का प्याकेजहरू। टेलिकम, राष्ट्रको संसार।
3: और इसके बाद जब हम बढ़ते हैं 1966 की सालाना पायदान नंबर 11 पर, तो एक और सुरीले संगीतकार की याद उभर आती है साहब, मास्टर सोनिक, जिन्होंने कई बड़े संगीतकारों का साथ देने के बाद अपने संगीत निर्देशन में पहला शानदार संगीत दिया अपने भतीजे ओमी के साथ। फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। लेकिन बैरोर भाइयों, अब मैं याद करूंगा उस इंटरव्यू को जो सोनिक साहब ने मुझे दिया था और जिसकी बात सोनिक साहब ने शुरू की थी उस फिल्म के कहानीकार और गीतकार जीएल रावल से।
4: एक्चुअली ओमी के साथ जोड़ी उन्होंने ही बनाई, क्योंकि हम लोग रोशन जी के साथ दिल ही तो है में असिस्टेंट और मैं अरेंजर के तौर पर काम कर रहा था
5: जी।
4: तो जीएल साहब ने महसूस किया कि इन लोगों को एक छोटी सी फिल्म देनी चाहिए क्योंकि इनमें कुछ गट्स नजर आते हैं
5: जी।
4: तो उन्होंने एक मुखड़ा दिया ट्यून करने के लिए
5: जी।
4: कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पर भंवरा डोले,
5: बहुत ही खूबसूरत गाना है वो तो
4: जी। तो वो ट्यून करने के लिए उन्होंने दिया, तो हम लोगों ने 5-6 ट्यूनें बनाई उनकी
5: जी।
4: तो 5-6 ट्यूनें बनाने के बाद ट्यूनें सुनाई गई। अब ट्यून सुनाते ही जीएल साहब की क्या नेचर है कि जो ट्यून उनको पसंद आ जाए वो एकदम लड़कों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं।
5: अच्छा।
4: हाँ, और चुटकी बजा बजा के उस ट्यून को गाना शुरू कर देते हैं।
5: ओहो, अच्छा।
4: सभी ट्यून के ऊपर नाचे वो और बड़े खुश हुए।
5: अच्छा।
4: यहाँ तक कि वो खुद कंफ्यूज हो गए, कहने लगे यार समझ नहीं आती मैं कौन सी ट्यून इनमें से सिलेक्ट करूँ। आप लोगों को जो ट्यून अच्छी लगती है आप दोनों को, वही ट्यून आप रिकॉर्ड करवा दीजिए।

अच्छा भाई, अब उस साल की पायदान नंबर 10 पर आप जरा संभल कर कदम रखिएगा। हाँ, क्योंकि फिल्म में इस गीत से पहले इसके हीरो हीरोइन के बीच लगता है कुछ गर्मा गर्मी हो गई होगी। शम्मी कपूर की अटखेलियों से नाराज होकर साधना ने उन्हें डांट कर कहा होगा, बदतमीज। तो शम्मी बोली,

0: और उससे ऊपर वाली पायदान नंबर 9 पर फिर साधना ही थी, मगर अब की बार कश्मीर में फिल्म आरजू की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार के साथ, और दोनों की ट्यूनिंग जो थी यानी शूटिंग में भी और हर शूटिंग से पहले और बाद में भी, उसे देखकर वहां बुलाए हुए सभी जर्नलिस्ट ने बहुत बहुत मजा लिया साहब। मैंने भी लिया, मैंने आपको बताया था ना वॉल्यूम 24 में कि मुझे भी शूटिंग देखने के लिए श्रीनगर बुलवाया गया था। वाह भाई, बड़ी कहकहों भरी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार और साधना में, और उसके बारे में राजेंद्र जी ने एक बार मुझे बताया था।
1: साधना थोड़ी मुझसे छोटी थी, हमारी दोस्ती दोस्ती इस तरह से जिस तरह दो लड़कों की आपस में दोस्ती होती है। हम एक दूसरे से बड़े तू तराख से बात करते हैं, बड़े बेलिहाज होकर बात करते हैं, और वो दोस्ती बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त आया कि हमने एक साथ रवेल साहब की तस्वीर मेरे महबूब में काम किया, वो तस्वीर बेहद कामयाब हुई, हमारी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये जो साधना है ये इतनी अच्छी कलाकार तो है ही, वो आप सब लोग जानते हैं, इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी इंसान है कि मैं तारीफ में जो कुछ भी कहूं कम होगा।
0: खैर साहब, आप आरजू का वो नबी पादान का गीत तो सुनिए।

बहनों और भाइयों, फिल्म आरजू से जुड़े हुए कई महान लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामानंद सागर, शंकर, जयकिशन, मोहम्मद रफी, हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार, फिरोज खान, महमूद, बल्कि फिल्मों और फिल्मी संगीत के ऐसे सैकड़ों सितारे हमें छोड़कर चले गए हैं। खैर, ये आना जाना तो सदियों से होता ही रहा है और होता ही रहेगा। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उन लोगों की याद अपने दिल से कभी जाने न दें।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव भरी।
1: कैप्टन रेग्मीज फार्म हाउस।
2: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान
1: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस,
2: पौराणिक नुवाकोट दरबार र बेलकोट घडी सँगै
1: काठमाडौँबाट मात्र 3 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने
2: आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरी दाउरामा पकाएका अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरू,
1: सेमिनार गोष्ठीका लागि उपयुक्त
2: स्कुल कलेजबाट एजुकेशन टुरमा जाने विद्यार्थीहरू लगायत बोटानिकल सम्बन्धी रुचि राख्नेहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान
1: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस, कम्तानको बगैंचा, बेलकोटगढी, मदानपुर 12, देउराली।
2: सम्पर्क नम्बर
1: 9141470164,
2: 9032445054,
1: 9049528781।
3: कब्जियत, ग्यास, अपच, यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभरको जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर ल्याक्स। 16 प्राकृतिक तत्वको संयोजनले बनेको यो ल्याक्सेटिभ ग्रान्युल्सले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहानको सुरुवात हल्का महसुससँग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर ल्याक्स, प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत, ग्यास, अपच र अम्ल पित्तको लागि। मेक योर डे ह्याप्पी एन्ड जोयफुल, पेट स्वस्थ, जीवन सरल। एसआर ल्याक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
4: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में
5: अच्छा दोस्तों, यादों का ये तीखा मीठा सिलसिला अब और आगे बढ़ता है और हम आ जाते हैं 1966 के हिट पायदान नंबर 8 के पास। उस पर एक बड़ा ही खूबसूरत मगर अनोखा सा गीत था। वो किसी प्रेमी प्रेमिका के बारे में नहीं था बल्कि माँ के बारे में था और फिल्म तो माँ से भी एक कदम आगे थी, यानी दादी।

0: भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी।
1: और जो गीत उस साल नंबर 7 पर हिट हुआ उसने तो भाई एक तरह से चमत्कार कर दिया। फिल्मी जगत के एक टॉप के गीतकार शैलेंद्र ने उसे प्रोड्यूस भी किया था। डायरेक्टर तो उन्होंने बहुगुणी बासु भट्टाचार्य को चुना, मगर आरके फिल्म्स की टीम के कुछ लोग भी उनके साथ हो लिए, जैसे खुद राज कपूर, शंकर, जयकिशन और हसरत जयपुरी और मुकेश।

0: वो फिल्म थी तीसरी कसम, जिसका ये गीत नंबर 7 पर हिट हुआ। बहुत ही सुलझी हुई फिल्म थी, गीत भी बहुत चले, मगर शैलेंद्र जी की शायराना तबीयत को उस फिल्म के बनते बनते कितनी तकलीफ पहुंची, इसका जिक्र एक बार शैलेंद्र के बेटे शैली शैलेंद्र ने किया था मुझसे। मगर शैली की आवाज आपको सुनाने से पहले मैं भारी दिल से आपको ये बता दूं कि शैली शैलेंद्र, जो खुद भी बहुत ही अच्छे गीतकार थे, वो भी बहुत कम उम्र में अपनी अच्छी सी बीवी और प्यारे से बच्चों को छोड़कर चले गए इस दुनिया से। अच्छा बहनों भाइयों, अब सुनिए शैली की आवाज अपने पिता के बारे में और तीसरी कसम के बारे में।
1: अमीन साहब, आप तो जानते हैं कि फिल्म से जो भी ताल्लुक रखता है वो अपनी दिली तमन्ना रखता है कि एक दिन मैं अपनी तरह की फिल्म बनाऊं, और उनको एक अच्छी कहानी मिली और उसको लेके वो उन्होंने तीसरी कसम बनानी शुरू करी। लेकिन उस दौरान जो उनको उनके साथ जो हादसे गुजरे, उससे वो बहुत ही मतलब दुखी हुए, बहुत ही सदमा पहुंचा।
0: लेकिन ये जो तुम कहते हो हादसात हुए, ये सिर्फ पैसों के मामले में या कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेज वगैरह भी थे?
1: आप तो जानते हैं कि वो बहुत जज्बाती थे और उस दौरान जाने अनजाने उनको दोस्तों और रिश्तेदारों से चोटें पहुंची। कभी कभी होता ही है कि आदमी सोचता नहीं कि इसका असर सामने वाले पे क्या होगा, लेकिन बाबा तो जज्बाती थे और वो दिली दिल में हर चीज मतलब जब्त करते गए, और हुआ ये कि आखिर में मतलब इसकी कीमत अपनी जान से उनको चुकानी पड़ी।
0: बहनों और भाइयों, वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। मैं भी एक बार फंसने लगा था फिल्म प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में, वो तो शुक्र है कि ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं आप सबके साथ आराम से गीत माने की छाओ में बैठकर कैसे ले पाता मीठे या मसालेदार गीतों का मजा।

0: गोल्ड पैलेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: वाओ,
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ
1: टुगेदर वी डेलिभर।

0: शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।

0: तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आ गए सन 1973 यानी 1973 के सारे गीतमाला हिट गीत और लाजवाब छाओं के गीत। आज जिस सरगमी झलक से हम इस वॉल्यूम में दाखिल हुए थे ना, उसी की अनोखी बड़ी पुरासर फिल्म परिचय के एक और गीत से आज हम दिल थाम कर कदम रखेंगे उस साल की सुरीली छाओं में, या यूं कहिए कि उस साल की रसीली मगर बोझल बिरहा की रात में।

इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी ना, वो थी बड़े सुरीले बड़े बाकमाल गायक भूपेंद्र सिंह की, जिनके गीतों को फिल्मी दुनिया में उतने मौके नहीं मिले बहनों और भाइयों जितने कि वो हकदार थे। बहरहाल अगर उनकी इस रैना को रसीला बनाया था पंचम के सुरों ने, तो पंचम के पिता उस साल अपने जीवन की शाम में भी हमारी शामों में रस घोल रहे थे।

1973 की छांव में छिपे हुए फिल्म फागुन के इस गीत के बाद बहनों भाइयों अब शुरू होता है उस साल की बाकी हिट गीतों की झलकों का सिलसिला गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 18 से। उस पर भी दादा बर्मन का जादू छाया हुआ था। फिल्म थी जुगनू।

0: पर छोड़ो बहाना
1: राना गिर गया चुनता।
2: और वार्षिक पायदान नंबर 17 पर उस साल था लक्ष्मी प्यारे की धुन से सजा हुआ गीत, फिल्म का नाम गोरा और काला।

0: और साहब उस साल की पायदान नंबर 16 पर फिर महका था दादा बर्मन का मधुर संगीत। फिल्म थी जया भादुरी और अमिताभ बच्चन के पहले मिलन की शानदार फिल्म अभिमान। मगर गीत की झलक सुनने से पहले बहनों भाइयों सुनिए एक बड़ा ही अनोखा इंटरव्यू। वो इंटरव्यू अभिमान ही के दिनों मेरे घर के छोटे से स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें चले आए थे तीन बड़े सितारे अमिताभ, जया और गजब के गीतकार, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर गुलजार। और तीनों ने आकर अपने चहीते फिल्मसाज यानी अभिमान के लाजवाब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में जो मजेदार बातें बताई थी ना, उनका बस एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए ले आया हूं आज। इसकी रिकॉर्डिंग भी गीतमाला की छाओ में के मेरे रिकॉर्डिस्ट केवी जॉन ही ने की थी। और इसमें आप सुनेंगे कि अमित, जया और गुलजार ने अपने प्यारे मास्टर जी ऋषिदा की कैसी शरारती टांग खिंचाई की थी।
1: क्या है ऋषिदा, जिस दिन डांटते नहीं है ना तो हम लोगों को लगता है सचमुच हमने कोई गलती की है, बुरा लगता है।
2: अच्छा अच्छा, यानी उनकी डांट में भी प्यार है
1: बहुत। और उनके साथ जब काम करते हैं तो लगता नहीं कि सकते हैं, ऐसे लगता है कि आंगन में बैठे हुए हैं और
3: मूंगफली खा रहे हैं।
4: मूंगफली नहीं गुलजार भाई, सर के बाल तोड़ रहे हैं।
2: सर के बाल तोड़
4: अमीन साहब, आपको ये नहीं मालूम?
2: नहीं।
4: एक और उनकी खास आदत है सर के बाल तोड़ना।
2: अच्छा,
4: कभी कुछ काम कर रहे होंगे, बड़े आराम से उनका हाथ जो है सर की तरफ बढ़ेगा, एक बाल चुनेंगे, उसको मसलेंगे, एक ही झटके में बाहर खींचेंगे, फिर उसे देखेंगे, सूंघेंगे और फेंक देंगे।
2: लेकिन अमिताभ साहब, ऐसा भी कोई बाल था जिसे उन्होंने सूंघा और फिर फेंका नहीं?
4: नहीं, इतनी देर तक तो मैं नहीं था वहाँ। लेकिन आजकल मैंने नोट किया है कि ये उनकी आदत जो है वो थोड़ी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है।
2: अच्छा, वो क्यों?
4: सर पे बाल ही नहीं रहे।
0: वाह भाई, क्या टीम थी वो भी, कितना प्यार करते थे वो तीनों अपने मास्टर जी ऋषिदा से, और कितनी

भाई अब तक तो खैर अमिताभ और जया का मिलन कई कई गुल खिला चुका है, दोनों नाना नानी भी बन गए हैं और दादा दादी भी। अच्छा खैर, अब 1973 के गीत नंबर 15 की झलक में आपसे कहा जा रहा है कि मोती को ढूंढ निकालने के लिए समंदर में डुबकी लगाओ, मगर कहा गया है हिंदी में नहीं, तमिल में।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और नंबर 14 पर भी एक बड़े अच्छे एक्टर का गाया हुआ गीत था। झलक सुनिए और एक्टर का नाम बताइए।

तो उस फिल्म ये गुलिस्ता हमारा के एक नेपाल के आसपास के किरदार का नाम था, जिसे अदा किया था डैनी डेंजोंगपा ने, जो खुद भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे लेकिन फिर एक्टर बनकर मुंबई में आकर बस गए। डैनी ने खुद मुझे बताया था कि उस गीत को गाने से पहले उन्हें किस तरह पहले डायरेक्टर आत्माराम को और फिर संगीतकार एसडी बर्मन को अपने सुरीलेपन का सबूत देने के लिए एक नेपाली लोकगीत गाकर सुनाना पड़ा। तो भाई उसी गीत के एक झलक मैं यहां सुनाता हूं आपको। मुझे तो डैनी का सुरीलापन बहुत ही पसंद आया था साहब, और हमारे नेपाली भाई बहन तो जरूर ये झलक सुनकर झूम उठेंगे के

कहिए आया ना मजा डैनी की सुरीली आवाज सुनकर। तो भाई अब लौट आइए उस साल की सुरीली छाओ में। तीन बड़े प्यारे गीत मैं वहां से ढूंढ लाया हूँ जिन्हें लोकप्रियता की धूप नसीब नहीं हुई, यानी जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। एक तो वही पद्मा खन्ना की फिल्म का गीत था, रविंद्र जैन की धुन में ढला हुआ। फिल्म सौदागर का वो गीत सुनकर पद्मा जी के नहाने और फिर तन को सुखाकर कपड़े बदलकर तन को सजाने का मंजर नजरों के सामने आ जाता है।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: कम सुनी हुई मगर बड़ी पुरसर धुन मुझे संगीतकार चित्रगुप्त की भी मिल गई है उस साल की छाव में। फिल्म थी इंतजार, बोल वर्मा मलिक के थे और गायक थे,
2: भाई वो तो आप पहचान ही ले।

0: और बहनों और भाइयों, अब गीतमाला की छाओं को सजाने वाला है उल्फत का एक बड़ा ही अमर नगमा। सीधे दिल की राहों से उभरा था वो गीत और सारेगम के एक एल्बम में इस गीत से पहले खुद संगीतकार मदन मोहन की आवाज भी है, ये बताते हुए कि एक फनकार एक कलाकार के लिए क्या है सबसे जरूरी।
1: मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है, सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में भाई उल्फत की राहों को निभाने का तरीका तो अपनी अपनी उल्फत के राही ढूंढ ही निकालेंगे। हमें तो यहाँ गीतमाला की रस्में निभानी हैं। तो वो देखिए सामने तैयार खड़ी है 1973 की गीतमाला संगीत जोड़ी की 13वीं पायदान के गीत की झलक, दिलदार से एक प्यार भरी इल्तिजा लिए। फिल्म थी मेरे जीवन साथी।

और उस साल हिट परेड के गीत नंबर 12 में राजा जानी धर्मेंद्र ने जब जरूरत से ज्यादा इंग्लिश छाड़ने की कोशिश की थी ना, तो उनकी हेमा ने उन्हें कैसे टोका था।

0: अच्छा साहब, उस साल पायदान नंबर 11 पर जो गीत था उसकी फिल्म के नौजवान डायरेक्टर उन दिनों फिल्मी दुनिया के इतिहास का एक सबसे जोरदार तहलका मचाने की भी तैयारी कर रहे थे। ये थे डायरेक्टर रमेश सिप्पी, जिनकी फिल्म शोले ने 1975 में जबरदस्त धूम मचा दी थी। मगर 1973 की ये फिल्म सीता और गीता भी बड़ी हंगामेदार थी साहब, हम सबको मनोरंजन के आसमान में उड़ा कर ले गई।
1: हवा के साथ साथ

0: भाई आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी तो थे 1973 में आगे आगे, मगर दादा एस डी बर्मन भी किसी से दबने वाले थोड़े ही थे। सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 9 पर भी उन्हीं का राज था।
1: धीरे से जाना बगियन मेरे भौरा, धीरे से जाना बगियन मेरे।
0: नहीं, वो तो बर्मन दादा का बड़ा ही पुराना ओरिजिनल हिंदी गीत था साहब, मगर डायरेक्टर विजय आनंद ने उनसे रिक्वेस्ट करके देवानंद की दिलचस्प फिल्म छुपा रुस्तम के लिए उसी धीरे से आने वाले गीत का पैरोडी रूप तैयार करवा दिया था।

बहन और भाइयों, अगर ये रेडियो का कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता ना तो यहाँ जरूर बचता खटमलों को मारने वाली दवाई का कमर्शियल। मगर ये हम तो हैं गीतमाला की छांव में, यहाँ तो बस हिट गीतों की झलकें हैं और छांव में छुपे रसीले गीत हैं पूरे के पूरे। चलिए यहाँ छांव का सेक्शन मैं फिर शुरू करता हूँ एक उलझन से। जी हाँ उलझन, मगर रवि की बड़ी मधुर धुन और साहिर लुधियानवी के बड़े गहरे शब्दों से संवरी हुई उलझन। फिल्म वही जिसका एक गीत उसी साल नंबर 22 पर भी बजा था, यानी धुन।

उलझने तो बहनों भाइयों मेरे जीवन को भी उन दिनों हर तरफ से जकड़ने लगी थी। रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की धूमधाम और भागदौड़ तो खैर बढ़ती ही जा रही थी और साथ में मेरे और भी कई बड़े बड़े और मुश्किल रेडियो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स शुरू हो गए थे जिनमें बड़ी बड़ी फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी के प्रोग्राम भी शामिल थे और हिंदुस्तान भर के कई शहरों में मुझे अक्सर उन दिनों जाना पड़ता था म्यूजिकल शोज या फैशन शोज या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की कंपेयरिंग के लिए। और मेरे बेटे राजिल को हमने अजमेर के मशहूर बोर्डिंग स्कूल मेयो कॉलेज में भेज दिया था, सो उसकी याद और उसकी फिक्र भी हमेशा लगी रहती थी। और मेरी बीवी रमा को कई बीमारियां परेशान कर रही थीं और उसके लिए डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्कर भी शुरू हो गए थे, मगर हाँ शुक्र है रमा थी बड़ी बहादुर। तकलीफें सहते हुए भी वो न सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि मेरे दफ्तर के कामों में भी मेरी पार्टनर बनी रही और उसी के सहारे मेरी उलझनों को थोड़ी सी राहत मिल जाती और हम दोनों की जिंदगी गोया बर्मन दादा की एक और अमर छांव की धुन में डूबकर संभल जाती।

बहनों और भाइयों, फिल्म अभिमान की लोकप्रियता 1973 और 74 में बढ़ गई थी। दोनों साल की एनुअल संगीत सीढ़ियों पर बजे उसके गाने, मगर उसके दो लाजवाब गीत साल की टॉप लोकप्रियता में शामिल हुए ही नहीं थे। तभी तो उनमें से एक गीत पिया बिन बासिया हमने पिछले वॉल्यूम की छाव में शामिल किया था और दूसरा ये तेरी बिंदिया रे इस वॉल्यूम में पूरा पूरा बजा। और अब गीतमाला की छाव में गूंजेगा 1973 का एक ऐसा गीत जिसमें दो बड़ी खास बातें थीं। एक तो ये कि उस फिल्म एक नारी दो रूप के बड़े गुणी संगीतकार थे गणेश, जिनकी काबिलियत का उजाला बहुत कम फिल्मों में ढल पाया। और इसकी दूसरी दिल को छू लेने वाली बात ये थी कि इस गीत में असद भोपाली के शब्दों के सहारे फिल्म संगीत के अजीम गायक मोहम्मद रफी ने अपने इंतकाल से 7 साल पहले ही पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके चले जाने के बाद संगीत प्रेमियों के दिलों पर क्या बीतेगी।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

आप सबसे एक विनती करूंगा, यह ब्रिज की उपासना है कि आओ साधो हरि चर्चा कीजिए, अधिक हो तो हमको दीजिए और कमती हो तो हमसे लीजिए, और पूरा हो तो छक छक पीजिए। ये ब्रिज की उपासना है। हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी या हमारे बीच विराजमान है। मैं ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ ना महाराज जी, क्योंकि मैं यहाँ मैं नहीं गाने आया हूँ, आप लोग भी मेरे साथ गाइए या ठाकुर को सुनाइए।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ।